0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

एक बहुत बड़ा गुंबद है और रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, बड़ी बड़ी खिड़कियां वहां पर, और फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने जो है मुख्तलिफ किस्म के हॉल्स और ऐसी जगहों का उन्होंने इंतजाम कर रखा है जहाँ पर कि वो मुख्तलिफ लोगों के सवालात जरूर एक मुसलमान, और खसूसन उसी दौरान में पूछा गया था कि अगर यहाँ पर खवातीन आए और वो मुसलमान ना हो तो क्या उनके सर पर हजाब होना जरूरी है, इस किस्म की बहुत सारी बातें पूछी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो सिर्फ ये है कि आप जो है एक ऐसे तरीके से अपनी सतर पोशी करें कि जिसमें कि मस्जिद की बेहरमती ना हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और जिस किस्म के भी सवालात आपके जहन में हों यहाँ पर आप पेश करें। मस्जिद बनने में काफी चार मेरा ख्याल साल का वक्त गुजर गया है, दरअसल यहाँ पर ऐसा कशी होती रही है क्योंकि मस्जिद के शुरू के आगाज में ही किसी ने अफवाहें फैला दी थी कि इस मस्जिद की सरमायाकारी के पीछे ईरान का हाथ है, और उस जमाने में ईरान आपको जैसे पता है जेर आताब था, और बहुत सारी जो है कुवतें कोशिश कर रही थी कि ईरान का किसी किस्म का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन बाद में पता चला कि मस्जिद की तामीर में जितनी भी डोनेशंस हो रही हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हैं और उसमें ईरानी हुकूमत का कोई असर अमल दखल जो है शामिल नहीं। तो चार साल की जो है डोनेशंस के बाद लोगों की फराख दिलाना जो है डोनेशंस के बाद ये मस्जिद क़याम में आई और मुझे भी उसको देखने का शर्फ हासिल हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी मस्जिद का इफ्तिताह हो उसके इफ्तिताह में चाहे वो मुझे बुलाएं या ना बुलाएं मैं जरूर जाऊँ। इस दफा सुबह के वक्त में उन्होंने वीआईपीस को बुलाया था, लेकिन हमेशा की तरह इस दफा भी मुझे हर मस्जिद के इफ्तिताह में इग्नोर किया गया, मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैंने शाम में जब आम पब्लिक के लिए मस्जिद के दरवाजे खुले तो मैं उसमें गया और मैंने जाकर मस्जिद में मस्जिद को देखा, उसके मुख्तलिफ जो थे फैसिलिटीज उनको देखा जो वहाँ पर कोशिश की कि जो इमाम साहिबान हैं या जो वहाँ पर लर्नड लोग हैं उनसे बात हो सके, लेकिन जो मेरा ख्याल है उनके बड़े इमाम जो हैं वो मौजूद नहीं थे जिनको ये लोग शेख कहते हैं, लेकिन एक यंग इमाम थे उनका नाम निसार है, उन्होंने बहुत सारे ऑडिटोरियम में बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लोगों से खिताब किया और उनके सवाल के जवाब दिया। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि मस्जिद के बारे में डेनिश मेन स्ट्रीम का ये ख्याल होता है कि यहाँ पर अब जो है लोग आकर वो रेडिकलाइज हो जाएंगे और हमारे डेनिश माशरे के खिलाफ काम करेंगे, तो आप लोगों का क्या एजेंडा है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसने उनके नौजवान रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हम सबसे पहले यहाँ के लोगों को जो भी हमारे पास आएगा उसमें दर्ज देंगे कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपनी नींद मुकम्मल करे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार रखे या ऐसा रवैया उनके साथ रखे जो कि एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान के साथ रख सकता है। ये सारी चीजें उसको मिलकर जो है सरप्लस देंगी, और जब इंसान में सरप्लस एनर्जी होती है तो उसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो है हम यहाँ अपनी जो तालीमात होंगी उसमें भी हम आहंगी अखुवत भाईचारे का दर्श देते हैं। इस्लाम का मकसद ही बुनियादी यही है कि चाहे वो किसी मुआशरे में इस्लाम का वजूद हो तो वहाँ पर वो अमन और भाईचारे का माहौल पैदा करे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यंगस्टर्स को मतलब किसी तरीके से रेडिकलाइज होने का जो है ना बहाना जो है वो ना देखें। उसके बाद मैं थोड़ा वहाँ पर घूमा, चंद तस्वीर नहीं, उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम रखा है, मुझे बाद में किसी ने बताया था कि उन्होंने ओपन सेशन रखे हैं, दिन मुझे याद नहीं लेकिन मेरा ख्याल है जुमे की बात हो रही थी या जुमेरात की बात हो रही थी, तो उस दौरान में कोई भी चाहे किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो इंसान वो आए, उसके जहन में कुछ ख्यालात हों, चाहे वो शरा के बारे में हों, चाहे वो किसी और मतलब फिका के बारे में हों, किसी और चीज के बारे में हों, तो वहाँ पर बड़ी ओपनली जो है ना बात हो सकती है। और जो मैंने लोग देखे वहाँ पर जितने भी इंतजामिया में मुझे लोग नजर आए हैं वो सब के सब यंगस्टर्स थे, और जो एक चीज मुझे ज़ाती तौर पर अच्छी लगी कि मैंने दूसरी मस्जिद जो है वहाँ पर
अपनी क्या उसका नाम है जो कतर वाली मस्जिद है उसमें भी देखा था कि उन्होंने लोग ऐसे रखे हैं कि जो बात कर सकते हैं, डेनिश मिजाज को समझते हैं, डेनिश जुबान पर अबू रखते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि अगर हमने इस्लाम का सही और मुस्बत आसर देना है तो हम यहाँ की मेन स्ट्रीम के साथ जो है हमारा डायलॉग रहे और हम उनकी किसी भी बात का जवाब दे सकें और उनको जो भी बातों को खोल कर बता सकें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आधी बात

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: उस वक्त की।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाब ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेशे खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मज़ सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मज़ सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मज़ सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौज़ सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पर मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियाँ इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند آباد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।